0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: दिल तो हर किसी के पास होता है, लेकिन सब दिल वाले नहीं होते।
3: सत श्री अकाल टू ऑल द रेडियो हांजी लिसनर्स।

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी रानू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
2: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर सीधे आओ आईएमई एडवाइजर। अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू नाले वरियां तो स्किल वीजा 186-189-190-482-491 स्किल असेसमेंट पार्टनर वीजा पेरेंट वीजा जां स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर। कॉल 02-9063-1618 हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई।

0: जिप्पी म्यूजिक अते म्यूजिक टाइम प्रोडक्शंस पेश करते ने पंजाबी फिल्म जुदा अधूरे प्यार दी पूरी कहानी।
1: मेरी जिंदगी चोन वाली पहली कुड़ी भी तू आखरी भी तू।
0: गुलाब सिद्धू अते जैस्मीन पसीन दी अदाकारी वेखो गिल रौंता दी लिखी अते सिमरजीत सिंह वल्लों डायरेक्ट कीती पंजाबी फिल्म जुदा। रिलीज होवेगी 21 अगस्त नू।
2: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो बंसल immigration.com.au।
4: मेरा नाम है रतन नूरा और काम करता हूँ खत्म पूरा भी, लव यू ऑल, भावनाओं को समझो। दोस्तों मैं हूँ सुनील पाल और आप लोग सुन रहे हैं मुझे रेडियो हांजी पर, रेडियो हांजी 1674 AM। अब आपका AM सिर्फ रेडियो हांजी सुन रहे होना चाहिए। हांजी हांजी, कभी ना कहना ना जी ना जी।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: जिपी म्यूजिक अते म्यूजिक टाइम प्रोडक्शंस पेश करदे ने पंजाबी फिल्म जुदा, अधूरे प्यार दी पूरी कहानी।
3: मेरी जिंदगी चोन वाली पहली कुड़ी भी तू हां ते आखरी भी तू।
2: गुलाब सिद्धू अते जैस्मीन पसीन दी अदाकारी, वेखो गिल रौंता दी लिखी अते सिमरजीत सिंह वल्लों डायरेक्ट कीती पंजाबी फिल्म जुदा। रिलीज़ होवेगी 21 अगस्त नूं।
4: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला, ना जाओ इधर उधर, सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नूं। नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा जां स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस लई एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618। हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली। I am the advisor.
5: Hi, this is Ayushman Khurana and you're listening to Radio Hanji.

0: हाँ भाई सिडनी वाले हो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी। हांजी।
1: कुछ गल्लां कहनिया नहीं पैंदियां, बस महसूस करनिया पैंदियां ने।
2: हाय नी, इन्ना सोहना मुंडा वी गूंगा है।
1: इस बार गल सिर्फ बोलन दी नहीं, दिल दी सुनन दी है।
3: मुंडे नु चाहिदी है सारी रात फोन ते गल्लां करन वाली कुड़ी, तू बोल नहीं सकदी, ओने नहीं होना तेरे पीछे।
1: लव इमोशंस अदे रिलेशनशिप्स दी कहानी। रिदम बॉयज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बोल पावे ना बोल, रिलीजिंग वर्ल्ड वाइड 4 सितंबर। रिटन एंड डायरेक्टेड बाय राकेश धवन।
4: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
5: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
4: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
5: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
4: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
5: आहो जी आहो,
6: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स्टन विच भी तुहाडी सेवा विच।

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तों वेयर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जीलोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
2: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर सीधे आओ आईएमई एडवाइजर। अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू नाले वरियां तो स्किल वीजा 186-189-190-482-491 स्किल असेसमेंट पार्टनर वीजा पेरेंट वीजा जां स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर। कॉल 02-9063-1618 हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
3: हाय दिस इज उमंग कुमार और प्यार से लोग मुझे ओके कहते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। कीप लिसनिंग।

0: जिप्पी म्यूजिक अते म्यूजिक टाइम प्रोडक्शंस पेश करते ने पंजाबी फिल्म जुदा अधूरे प्यार दी पूरी कहानी।
1: मेरी जिंदगी चोन वाली पहली कुड़ी भी तू हां ते आखरी भी तू।
0: गुलाब सिद्धू अते जैस्मीन पसीन दी अदाकारी वेखो गिल रौंता दी लिखी अते सिमरजीत सिंह वल्लों डायरेक्ट कीती पंजाबी फिल्म जुदा। रिलीज होवेगी 21 अगस्त नू।
2: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू नाले वरियां तो स्किल्ड वीजा 186 189 190 482 491 स्किल असेसमेंट पार्टनर वीजा पेरेंट वीजा जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर कॉल 02-9063-1618 हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली which we I am your advisor.
3: Hi man, I'm Saiko Mirbai from Manipur, Commonwealth champion gold medalist. Sunte rahiye radio Hanji.
4: Bale bale bale.
3: Bale bale bale.

0: एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बोल पावे ना बोल।
1: प्यार नु सुनन ली करना भी नहीं, दिल दी लोड़ हुंदी।
0: कुछ गल्लां कहनियां नहीं पैंदियां, बस महसूस करनियां पैंदियां ने।
1: एहो गल्लां ते मैं हुणे अपनी जुबान वट के हो जाना।
0: इस बार गल सिर्फ बोलन दी नहीं, दिल दी सुनन दी है।
2: जिंदगी किवें कटांगे, मैं नहीं रह सकती ओदे बिना, मैनूं ओ चाहिदा।
0: रिलीजिंग वर्ल्ड वाइड 4th सितंबर, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय राकेश धवन। लव, इमोशंस अते रिलेशनशिप्स दी कहानी, बोल पावे ना बोल।
3: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वल लै लो।
4: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
3: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
4: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
3: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
4: आहो जी आहो।
3: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
1: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी बखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
3: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर, सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक, हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस, आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02906316 18, हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी। I am the advisor.
4: हाँ जी, हाँ जी, यो

0: पुन खट लै बांकिए नारे, कृष्णा आ गया रेडियो। हाँ जी, 1674 AM दे खुले अखाड़े दे द्वारे। क्या बात है, सो हैप्पी। कितना कैंट बोलिया मैं। क्यों नानिया जी, हाउ आर यू?
1: आई एम फाइन, हाउ आर यू?
0: गुड, ओके। रिपोर्ट आज तक गाने कितने मजेदार लगेगा।
1: बहुत बढ़िया गाने सी। थैंक यू वेरी मच, वेरी वेरी अपलिफ्टिंग सॉन्ग्स। पर जब तुसी कहने मुंडा मरदा जावे, मैं तो काली पैगी, मैं के मैं एम्बुलेंस कॉल करा।
0: You're very nice like that. Thank you so much.
1: I'm so caring. What to do? That's my nature.
0: That's your nature.
1: बस किसी दे जख्म ते नून पाना मेरी बड़ी प्यारी नेचर है।
0: ओह ये रहा ललिता पवार, एक तो आगे जाना।
1: शशिकला मेन हुंदी सी, है ना, मेरी फेवरेट पता केड़ी सी?
0: ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ ਯਾਦ, ਜਿਹੜੀ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਦੀ ਮੂਵੀ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਸੀਗੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸੀਤਾ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਚਾਚੀ ਮਾਮੀ ਜੋ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਆਂਟੀ ਥੋੜੀ ਹੈਵੀ ਜਿਹੀ,
1: ਮਨੋਰਮਾ,
0: ਹਾਂ ਉਹ ਅੱਖ ਮਟਕਾਏ ਕਿ ਕਹਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰਮ ਜਲੀ।
1: I think we are on the same page.

0: साहिबा प्यार में सोता नहीं।
1: तो आप अब आगे से ये भी बोलोगे झूठ बोले
0: काटे।
2: बट कृष्णा आई एम इम्प्रेस्ड टू रिमेम्बर दिस सॉन्ग बिकॉज लास्ट टाइम नोनिया जी एंड आई संग दिस
0: That's what I paid him compliment this morning. I said, you remember Manorama?
1: Heart hai mera. Manorama is my heart.
0: Oh.
1: Rishi Kapoor is also not really, but still my heart. पर क्या अंडगाने से ना बोले अच्छा देखा जाए आज हम लोगों ने गोवन सॉन्ग्स को बहुत ज्यादा याद कर लिया है ना। जूली जूली इज ऑल्सो समथिंग लाइक दैट और ये भी है ना।
0: थोड़ा वेस्टर्न वेस्टर्न टच
1: क्या बात है। रिचर्ड जी थैंक यू सो मच हमारे अखाड़े को गोवन वाइब देने के लिए। थैंक यू सो मच।
2: वो तो मौके में चौका लग गया ऐसा कुछ।
1: शाइन ते साडे नाल स्कूल च पढ़दा हुंदा सी हुण ओहदे अंदर मैं अपने अंदर किस तरह उहनूं जिंदा रखा। शाइन भरा इफ यू आर लिसनिंग फ्रॉम वैंकूवर स्टिल मिस यू। अपने अंदर नूं जिंदा रखना। थैंक यू सो मच।
0: मोमबत्ती ला लो अंदर।
1: मोमबत्ती
0: अंदर शाइन हुंदा।
1: अज कोई बुझारत आई सी च मोमबत्ती जवाब होवे आई सी कि नहीं आई सी?
0: नहीं।
1: अरे यार ये मैनूं बड़ा फील हुंदा।
0: अच्छा?
1: सुई वाली आई कोई कि नहीं? मेरा पक्के है ना भले
0: तो फील हो जाना जे मैं क्या नहीं मैं मानने लनी हो आई सी।
1: अच्छा शिट मैं मिस कर गया। वेरी बैड यार वेरी बैड
0: वेरी वेरी बैड।
1: हुण आपां इदां करदे आं आपां इक होर कॉलर लैणे आं
0: जी
1: फिर आपां मैसेजेस वाल दा रुख करांगे
0: यप
1: ते फेर की करांगे जी फेर
0: कुछ तो करांगे
1: ब्रेक ही लवांगे।
0: बड़ा लंबा नहीं सोचिंदा दिल नूं घबराहट पैण लग जांदी
1: है ना। ए वी गल ठीक है।
0: यस
1: सो साडे नेक्स्ट कॉलर ने जी मनराज ओजला। एक सेकंड रुको जी ऐड कर लो इन्हां नूं मैं। लो जी मनराज जी
0: श्री साहब गिल साहब
1: ओजला साहब
3: ओजला
1: गिल साहब ने। अच्छा यार कंफ्यूज करी इन्हें पे मैं थोड़े के केड़ा साहब की लावा पिछे ए दसो।
3: गिल साहब अमेरिका गया होया।
0: कल्ले कल्ले कल्ले थानू नहीं लेके गए
3: ना?
0: आई
3: नो वो बोर्ड मीन उन्हें एक दिन क्या कि मैं तेरा सारा चीज बेच दा ता मैं अमेरिका जा लिया जाना
0: फिर
3: वो चल पे
0: वो चल गया। ओए होए दैट्स वेरी मीन।
3: पर उन्हें सारा कुछ वापस देता सी वा
0: देता सी। चलो
1: ओके ओके
0: चलो गिल साहब वैसे तो गिल हुंदे चंगे ने।
1: क्या बात है आज लाता स्कूल शूल नहीं सी
3: लार्ज डीडी ते मीडियम डीडी
0: लार्ज
1: से मीडियम डीडी
0: लार्ज बेटा
1: वेरी गुड। तो लार्ज जी तक तो ठीक सीगा जब जो तुसी मीडियम कहता फिर हुन थोड़ी लार्ज जी ने थोड़ा जो कुटापा करना ना ठा ठा ठा ठा।
3: लार्ज
1: जी का शावर चलो फिर ठीक है गल नहीं पहुंचनी ए फिर बचाओ हो गया थोड़ा की सुनाओगे
3: आज तो मैं बाजार सुनाऊंगा।
1: हां जी
3: मैं ये भी कहना सी कि थैंक यू तुसने मेरा बजारत पेज पाया सीगा।
1: ओहो कोई चक्कर नहीं ओजला साहब
0: बस थैंक यू बिकॉज़ यू डिजर्व इट।
1: प्यार बड़ा ही रखो इदा ही। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू सो मच।
0: ते आज फिर और की सुनाओगे?
1: आज के लिए आऊंगे फिर
3: ता तुसी मेनू देख भी नहीं सकदे तुसी मेनू फील भी नहीं कर सकदे तुसी मेनू सुन भी नहीं सकदे पर मैं खाली गलियां च आ बैठा हुंदा मैं पौड़ियां दे तल्ले हुंदा
0: पौड़ियां थले स्पेस हुंदी ता है।
1: हां हुंदी है भाई हुंदी है सही गल है उत्थे शू रैक रख दिंदे हुंदे सी जिथे थां मिले आपां शू रैक रख दिंदे आ। की है फिर हवा एयर
3: नहीं ओ यार ते तुसी

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: रिदम बॉयज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बोल पावे ना बोल
1: प्यार नु सुनन ली कन्ना दी नी दिल दी लोड़ हुंदी
0: कुछ गल्लां कहणियां नहीं पैंदियां बस महसूस करनियां पैंदियां नी
1: एहो गल है ते मैं हुणे अपनी जुबान वट के हो जाणा
0: इस वार गल सिर्फ बोलन दी नहीं दिल दी सुनन दी है
2: जिंदगी किवें कटांगी मैं नहीं रह सकती ओदे बिना मैनूं ओह चाहिदा है
0: रिलीजिंग वर्ल्ड वाइड 4th September, written and directed by Rakesh Tavan. Love, emotions, adi relationships di kahani. Bol paave na bol.
3: Suno ji, gaddi Akshara Jewelers wal le lo.
4: Oh, jo hukam meri sarkar.
3: Oh, aa kidhar? Harry Spark wal jana. Tusi aa kithe ja rahe ho?
4: Akshara Jewelers di dooji location.
3: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे
4: आहो जी आहो
3: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच
5: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਰੇਡੀਓ

0: कुछ गल्लां कहनियां नहीं पैंदियां, बस महसूस करनियां पैंदियां ने।
1: हाय नी, इन्ना सोहना मुंडा वी गूंगा है।
0: इस बार गल सिर्फ बोलन दी नहीं, दिल दी सुनन दी है।
2: मुंडे नु चाहिदी है सारी रात फोन ते गल्लां करन वाली कुड़ी, तू बोल नहीं सकदी, ओने नहीं आना तेरे पीछे।
0: लव इमोशंस अदे रिलेशनशिप्स दी कहानी। रिदम बॉयज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बोल पावे ना बोल, रिलीजिंग वर्ल्ड वाइड 4 सितंबर। रिटन एंड डायरेक्टेड बाय राकेश धवन।
3: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजास, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
5: हाँ जी, मैं हूँ विक्का और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो, हाँ जी 16748 AM बेबी।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी रेडियो हांजी
2: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
3: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर सिद्धे आओ IME एडवाइजर अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491 स्किल असेसमेंट पार्टनर वीजा पेरेंट वीजा जा स्टूडेंट वीजा तो PR तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस आज ही परोसे नाल संपर्क करो IME एडवाइजर कॉल 02-9063-1618 हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी IME एडवाइजर।
4: कुछ गल्लां कहनियां नहीं पैंदियां बस महसूस करनियां पैंदियां ने।
5: हाय नी इन्ना सोहना मुंडा वी गूंगा है।
4: इस बार गल सिर्फ बोलन दी नहीं दिल दी सुनन दी है।
5: मुंडे नु चाहिदी है सारी रात फोन ते गल्लां करन वाली कुड़ी तू बोल नहीं सकदी ओने नहीं होना तेरे पीछे।
4: लव इमोशंस अदे रिलेशनशिप्स दी कहानी रिदम बॉयज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बोल पावे ना बोल रिलीजिंग वर्ल्ड वाइड 4 September रिटन एंड डायरेक्टेड बाय राकेश धवन।
6: सुनो जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
7: और जो हुकम मेरी सरकार।
6: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना तुसी आ किथे जा रहे हो।
7: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच
6: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोके

रेडियो जी 1674 एम दे उत्ते तुहाडा सारयां दा स्वागत है जी। मैं गौतम कपिल और अज प्रोग्राम न्यूज़ रूम दे विच सब तो पहला इंटरनेशनल न्यूज़ दे नाल आओ करदे हां शुरुआत। लंघी कल एक बार फिर तो एक लातीनी मुल्क दे विच भूचाल दे झटके महसूस किए गए ने। पेरू दे एंडिस पहाड़ी खेतर दे विच रिक्टर पैमाने दे उत्ते 6.7 दी तीव्रता वाला एक शक्तिशाली भूचाल आया। अमरीकी भू विज्ञानक सर्वेखण दे मुताबक इस दे विच जानी ते माली नुकसान की कोई बहुतियां बड़ियां खबरां हासिल नहीं हुई, पर इस भूचाल दे कारण हफड़ा दफड़ी दा माहौल जरूर बन गया। लोग अपनी जान बचाने दे लई सुरक्षित थावां दे वल भजदे दिखाई दिते। अमरीकी सर्वेखण दे मुताबक भूचाल दा समां कल दे दिन यानी वीरवार दे दिन स्थानक समय दे मुताबक दोपहर 1 बजे दे आसपास सी, और इस दा केंद्र अयाकचो खेतर दे विच शहर के अंदर लगभग 38 किलोमीटर उत्तर पछम के वाले से और 66 किलोमीटर जमीन तो डूंघाई के वाल इस भूचाल दे रिकॉर्ड किया गया। भूचाल के झटके दक्षणी पेरू के कई खेतरां दे विच महसूस किए गए ने। इस दे विच इका ते अरेकीपा भी शामिल ने। दस दिए कि वह खेतर ने जिथे पहला भी भूचाल के असर देखने को मिले ने। पेरू प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। रिंग ऑफ फायर एक अजिहे खेतर नूं कहा जाता है जो लगातार भूचाल दीआं गतिविधियां दी मार चलदा रहा है और भविख दे विच वी अजिहे भूचाल उत्थे आउंदे रहणगे। इस तों पहलां 2007 दे विच इका खेतर दे अंदर एक 7.9 दी तीव्रता वाला वड्डा भूचाल आया सी जिस दे नतीजे वजो 600 लोकां दी मौत हो गई सी। इंटरनेशनल न्यूज़ दे विच अगली खबर अफ्रीकी मुल्क जैम्बिया तो जिथों दे चोन कमीशन ने लंघे दिनी ऐलान किया कि राष्ट्रपति हकाएंडे हिचेलिमा नूं अगली बार फिर तो 5 सालां दे लई प्रधान चुनिया जांदा है, यानी कि राष्ट्रपति चुनिया जांदा है। पिछले वीरवार दे दिन हुई राष्ट्रपति चोणां दे विच उन्हां ने फैसला कुन जित हासिल की है। इस दे विच रन ऑफ वोटिंग की जरूरत ही खत्म हो गई सी। कुल 50 लाख वोटां दे विचों हिचेलिमा नूं 61% यानी कि 29,65,000 तो वधेरे वोटां हासिल हुई ने। उन्हां दे नज़दीकी विरोधी ते विरोधी धिर दे नेता ब्रायन मुडबायल नूं 18,56,000 वोटां यानी कि लगभग 38% वोटां हासिल हुई। चोन कमीशन दे मुताबक अधिकारक नतीजियां तो बाद हिचेलिमा नूं जैम्बिया गणराज दा एक बार फिर तो अगला राष्ट्रपति चुन लिया गया। इस तो पहला भी उही राष्ट्रपति सी। सारियां नज़रां इस चोणां दे उत्ते इस करके टिकियां हुई सी क्योंकि वोटां दी गिणती दी प्रक्रिया दे दरमियान एक बहुत तनावपूर्ण माहौल बनिया रहा। कुछ पोलिंग स्टेशन दे उत्ते अधिकारियों दे उत्ते हमलियां दीआं खबरां भी सामने आईआं। बैलेट पेपरस दे विच चोरी दीआं खबरां तक सामने आईआं और इस दरमियान पिछले शुक्रवार दे दिन गिणती भी कुछ एक चोन बूथां दे उत्ते रोक दित्ती गई सी, बल्कि काउंटिंग बूथां दे उत्ते। इस तों बाद भारी सुरक्षा दे विचकार इन्हां गिणती दी प्रक्रियावां नूं फिर तो शुरू किया गया। हालांकि इस दरमियान कुछ एक गिरफ्तारियां भी हुईआं पर किसी वड्डे कौमी नेता दे उत्ते कोई इल्जाम नहीं लग्या। अमरीका की जांच एजेंसी FBI ने न्यूयॉर्क दे विच एक महिला नूं गिरफ्तार किया जिस दे उत्ते दोष यह है कि वह अल्बनी दे विच सूबाई कैपिटल बिल्डिंग दे विच कैपिटल बिल्डिंग यानी कि उत्थों दी पार्लीमेंट दी बिल्डिंग दे उस नूं बंब दे नाल उड़ा के उत्थे मौजूद संसद मैंबरां नूं मारन दी योजना बना रही सी। यह भी कहा गया कि 35 साल की जैसिका बोवी जिस दे उत्ते कथित तौर दे उत्ते इल्जाम लगे ने उसने पहला भी इस्लामिक स्टेट दे प्रति यानी ISIS दे प्रति अपनी वफादारी जताई सी। उस दे उत्ते एक अजिहे विदेशी संगठन नूं मदद देन या स्रोत देन दा इल्जाम लगाया गया जिस नूं अमरीका ने अतवादी संगठन ऐलान रखा है। यह भी कहा जा रहा है कि बोवी ने इस इमारत की कई बार निगरानी एक किस्म के नाल रेकी की सी। गिरफ्तारी के समय भी उसके पासों एक नकली बंब एक खराब बंदूक भी हासिल हुई। ये दोवें चीज़ा कथित तौर के उत्ते अंडरकवर एजेंटा ने उसनू दित्तियां सी क्योंकि उन्होंने उस दे उत्ते शक भी किया सी कि यह इस किस्म की घटना नूं अंजाम दे सकदी और उन्होंने शक सही पाया गया जदों उसका पीछा किया गया। अंडरकवर एजेंट के नाल नाल स्थानक पुलिस ने उसनू गिरफ्तार किया। क्रिमिनल की शिकायत के मुताबिक बोवी ने कथित तौर के उत्ते अंडरकवर एजेंट्स नूं यह भी गल कही सी कि मैं इमारत का जिन्ना हो सके उन्ना हिस्सा खत्म करना चाहनी हाँ ते सैनेटर्स नूं भी मारना चाहनी हाँ। हाले तक यह स्पष्ट नहीं है कि बोवी ने अपने उत्ते लगे दोषां नूं अदालत दे विच

0: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: कुछ गल्लां कहनियां नहीं पैंदियां, बस महसूस करनियां पैंदियां ने।
3: हाय नी, इन्ना सोहना मुंडा वी गूंगा है।
2: इस बार गल सिर्फ बोलन दी नहीं, दिल दी सुनन दी है।
4: मुंडे नु चाहिदी है सारी रात फोन ते गल्लां करन वाली कुड़ी, तू बोल नहीं सकदी, ओने नहीं होना तेरे पीछे।
2: लव इमोशंस अते रिलेशनशिप्स दी कहानी। रिदम बॉयज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बोल पावे ना बोल, रिलीजिंग वर्ल्ड वाइड 4 सितंबर। रिटन एंड डायरेक्टेड बाय राकेश तवन।

0: गॉड ब्लेस यू छोड़े पुतु.
1: थैंक यू.
0: आज की सुनाऊंगी?
1: आज मैं चुटकुला सुनावांगी, पर चुटकुला सुनाने तो पहले मैं तुम स्पोर्ट्स दी अपडेट दें दिया.
0: ओह
1: ते ये है कि जेरे ऑस्ट्रेलियन सॉकर प्लेयर ने एलिसांड्रो सिकारी जेरे की 22 साल दे ने उन्होंने बेनफिका सॉकर क्लब पोर्चुगल च ज्वाइन किया तो उन्होंने ट्रांसफर हुई है $33 million दी.
0: वो 33 million.
1: बहुत की प्लेयर ने ऑस्ट्रेलियन सॉकर रूज ली ते ओना दी एक ए भी खासियत ओना दी हाइट भी बहुत लंबी है वो है गे ने 1.91 meters दे
0: 1.91 meter nearly 2 meters. हाँ
1: हाँ जी
2: हाँ. ये के ना कौन्दा
1: जिदा की
0: 40 inch उन्दे ने 1 meter 80 inch दा
1: मेरे साथ मेनु हाइट दे साथ नहीं पता पर मेनु इन्ना को पता कि लाइक मे बी लाइक 7 foot दे नेरे हो सकदा.
2: अच्छा अच्छा अच्छा बोले बोले बोले चलो की ले फिर
1: आज मैं चुटकुला सुनावांगी.
2: हां जी.
1: एक बारी पप्पू दी घर ली पप्पू ना आपस विच ही लड़ पंदे आ ते दो तीन दिन बाद पप्पू दी घर ली जांदी सुना जी असि सुलह कर लेंदे आ तुसी थोड़े नीवे हो जाओ ते मैं भी थोड़ी नीवी हो जांदी आ ते पप्पू कहंदा मैं की फिर करा मैं भी फिर की करा ते पप्पू भी कर मेनू की करना पौगा ते पप्पू भी घर ली कहंदी कि तुसी माफी मांग लो ते मैं तुहानू माफ कर दंदी
0: That's very very nice. Okay. Equation badi badhiya hai. Main agli bari dhyan rakhungi. Thank you, Shone Putu.
2: Thank you, Arjun. Thank you.
0: Chote chote ma'am sahab hale tusi taiyar nahi kite.
1: मैं तो रोज कहनी है कि फोन ला ला नो आई एम टू शाय कर दिया.
0: इट्स ओके दिल टेक टाइम.
2: चलो कोई नहीं. थैंक यू तो ताड़ा दिन बढ़िया बढ़िया रहे. नेक्स्ट साडे नाल ने मन्नत फतेह. सत श्री अकाल मन्नत फतेह तुसी आउने रहो.
3: सत श्री अकाल अंकल जी नाले आंटी जी.
2: सत श्री अकाल
0: जी. की हाल चाल ने जी?
3: मैं ठीक है तुसी दसो.
0: बहुत बहुत बढ़िया जी. अज असी मन्नत
2: पहला की
0: पहला बहुत बहुत बढ़िया सी ना. बहुत बढ़िया नु असी चेंज करके ना उन्हें नाम देता मन्नत. बिकॉज मन्नत इज ऑलवेज फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग तैयार होंगे ने मन्नत एंड फतेह.
3: ठीक है. थैंक यू.
0: यू वेलकम.
2: हाँ जी की लाए फिर?
3: आज मैं सुनाऊंगी एक बोली.
2: ओके.
3: ਪੈਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ ਖਟਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਪੀਜਾ ਨੀ ਪੀਜਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਉਤਨੀ ਪਾਈਆ ਚੀਜ਼ਾ ਨੀ ਪੀਜਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਉਤਨੀ ਪਾਈਆ ਚੀਜ਼ਾ
0: ਪੀਜ਼ਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਉਤਨੀ ਪਾਈਆ ਚੀਜ਼ਾ ਮੋਜ਼ਰੇਲਾ ਮੋਜ਼ਰੇਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਨੀ ਆਉਂਦਾ Four cheese.
2: Thank you,
0: very,
2: Manat.
0: Very nice. Ji.
3: Sat Sri Akaal, Uncle Ji, Nale Doni, Aunty Ji.
2: Sat Sri Akaal,
0: Fateh Ji, Nale Landiyan, Chuyan, De Sardar Ji.
3: Tusi
0: kivein
3: ho?
0: Tusi kivein ho?
2: फिर तुसी रिएक्ट क्यों नहीं कीता?
0: ताही करके ते क्या तुसी बड़े हो गए.
3: आज मैं सुनाऊंगा एक बोली.
0: ओके.
3: वारी वर्षी खटन गया सी वारी वर्षी खटन गई खटके लिया पावे नी तू सुती थी तेरा यार उबर चलावे.

0: 190-482-491. Skill assessment, partner visa, parent visa, just student visa to PR tak. Har immigration process le expert guidance. Aaj hi parose naal sampark karo. IME advisor. Call 02-9063-1618. Hun Parramatta Sydney ati New Delhi vich vi. IME advisor.
1: Suno ji, gaddi Akshara Jewelers val le lo.
2: O jo hukam meri sarkar.
1: O aa kidhar? Harry Spark val jana. Tusi aa kithe ja rahe ho?
2: Akshara Jewelers di dooji location.
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे
2: आहो जी आहो
1: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल्ड वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618 हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी। I am your advisor.
3: Radio Hanji, 1674 AM.

0: 7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
1: ओए असीं लौरिए हुन्ने आ, स्याणे बंदे दी सानू समझ आवे या ना आवे, चलाक बंदे दी असीं अख पढ़ ले।

0: मार दे रही तू।
1: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
2: और जो हुक्म मेरी सरकार।
1: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
2: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
2: आहो जी आहो,
3: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
4: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
5: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
4: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
5: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
6: सत श्री अकाल टू ऑल द रेडियो हांजी लिसनर्स।

0: सिडनी वाले हो तुसी सुन रहे हो अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी 1674 AM रेडियो
1: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491 स्किल असेसमेंट पार्टनर वीजा पेरेंट वीजा चा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर कॉल 02-9063-1618 हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी
2: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
3: रेडियो हांजी 1674 AM।

0: तुहाडे मोढे नाल मोढा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपने टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
2: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर सीधे आओ IME एडवाइजर। अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू नाले वरियां तो स्किल वीजा 186-189-190-482-491 स्किल असेसमेंट पार्टनर वीजा पेरेंट वीजा जां स्टूडेंट वीजा तो PR तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो IME एडवाइजर। कॉल 0290631618 हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी IME एडवाइजर।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन। रेडियो हांजी 1674 AM

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: सत श्री अकाल जी, मैं तुहाडा अपना रविंदर गरेवाल, तुसी सुन रहे हो रेडियो हांजी

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ਸਤਿਕਾਲ, ਮੈਂ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਗਿੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 AM।

हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। और ये जिनको जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। थैंक यू।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
1: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी रानू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउन दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा
2: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल
1: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।

0: नहीं तो इस मिठे जहर दे विच जेड़ा भी कितने उंगल ला पैंदा कई बार उन्हू पानी का घुट भी नसीब नहीं हुंदा। कहानी लिखी सी हरप्रीत सिंह जवंदा होरां ने, साढ़े तक पहुँचाई सी गुरसेवक सिंह सिद्धू होरां ने। दोवां जीआं दा धन्नवाद। खुश रहो, तंदुरुस्त रहो, जीउंदे वास्ते रहो। जिंदगी दे विच शायद तुसीं वी बड़ी वारी ये चीज़ वेखी होवे, साढ़े नाल जिहड़े निके निके जे बरतांत वापरदे ने घर तों लैके बाहर तक, अपणियां तों लैके बगानियां तक, जिन्हां नूं आपां बड़ी वारी नज़रअंदाज कर दिंदे, पर कई वारी जे तुसीं इन्हां दा लाका देका अपनी जिंदगी च वापरे किसी वड्डे घटनाक्रम दे नाल जोड़ो ते तुहानूं पता लगदा कि इह तां पूरी फिल्म सी ते ओह जिहड़ा निका जिहा इदां दा कुछ वापरिया सी जिहनूं मैं बहुती तवज्जो भी नहीं दित्ती, वह इसे दा ही रलदा मिलदा एक हिस्सा सी, इसे दा ही एक ट्रेलर सी। बड़ियां चीज़ां जिंदगी च तुहानूं इस तरीके दे नाल भी समझण नूं मिलणगियां। एक निके जे ठेडे नूं तुसीं किसे बड़े वड्डे एक्सीडेंट दे नाल भी कई वारी मेच के वेख सकते हो। कई वारी ओह तुहानूं इदां भी प्रतीत कराउंदा कि इस वारी मेरे नाल उन्ना वड्डा कुछ नहीं वापरिया, इस वारी उहदा अनेका जिहा ट्रेलर मेरे नाल वापर गया। समझण सीखण वाली गल ये है कि जे सीखना तो फिर निके जे तो सीख लो। तो जिन्होंने नहीं सीखना वो बहुत वड्डा वापरन दे उत्ते भी फिर दोष दूजियां नूं देंदे रहिंदे, हल कदी भी नहीं लभदा। पर छोटा जिहा फार्मूला तुसीं भी अपनी जिंदगी दे विच लागू करके वेख सकदे हो, जामर पिछे होए बीते ते झाती मार के वेख सकदे हो। निक्कियां निक्कियां घटनावां जां फिर जो तुहानूं लगदा बहुत वड्डा, इस सारे कुछ दे नाल नजिठिया जा सकदा। वो कुदरत, वो रब, वो शक्ति जिहनूं तुसीं मानदे हो, जिहदे विच तुसीं विश्वास रखदे हो, ओह हमेशा तुहानूं निक्के निक्के संकेत देंदी रहिंदी है, तुहाडे सोहणे होण दे वी, तुहाडे हंकार दे वी, तुहाडे प्यार दे वी, तुहाडी चंगियाई दे वी, तुहाडी बुराई दे वी, तुहाडे लालच दे वी, तुहाडी शख्सियत दे हर एक पक्ष दे, जो साडे सारिआं दे अंदर किसी ना किसी मात्रा दे विच जरूर मौजूद ने। हाले कि जदों आपां इन्हां चीज़ां नूं अपने आप दे अंदरों वेखना पढ़ना शुरू कर दिता फिर अपने आप ही दूर हो जाएंगे, जां फिर इदां कह लो कि अपने आप मैनेज होने शुरू हो जाएंगे। आस करदे हां कि अज दी कहानी तुसीं पसंद कीती होएगी। चढ़दी कला च रहो, हसते खेडते रहो, तंदुरुस्त रहो।
1: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au। Me.

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au। We'll be right back.

0: समझे भोरा
1: कहां विष्णु पद गावे गुंग जतन करे तो पीसुर भंग
0: कहां पिंगल पर्वत पर भवन नहीं होत उहा उस गमन
1: करतार करुणा में दीन बेनती करे नानक तुमरी कृपा तरे
0: संग सहाय सुआवे न चीत जो बह राई ता सो प्रीत
1: बलुआ के ग्रह भीतर वसै आनंद केर माया रंग रसै
0: दृढ़ कर मन मने प्रतीत काल न आवे मूढ़ चीत
1: बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महा लोभ त्रोह
0: यह जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख लियो आपन कर कर्म
1: ठूठा कर तुम पह अरदास जियो पिंड तेरी रास
0: तुमात पिता हम भारत तेरे तुमरी कृपा मैं सुगनेरे
1: कोई न जाने तुमरांत ऊंचे ते ऊंचा भगवंत
0: सगल समगरी तुमरे सूत्रधारी तुम ते हो स्वाज्ञाकारी
1: तुमरी गत में तुम ही जानी नानक दास दा कुर्बानी
0: सुख मनी सुख अमृत पव नाम भगत जना कह मन विश्राम अठ चार श्लोक
1: दीन हार प्रभ छोड़ कह लागे आन सुआए नान कहू नसी जई बिना वै पत जाए सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी
0: दस वस्तु ले पाछे पावे एक बस कारण भी खोट गवावे
1: एक पी ना दे दस पी हिर ले तो मूड़ा कहो कहां करे
0: जिस ठाकर सो नाही चारा ताको की जय सद नमस्कार
1: जाके मन लागा प्राण मीठा सर्व सुख ताहू मन बूठा
0: जिस जन अपना हुक्म मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया
1: अगनत साहो अपनी दे रास खात पीत बरते आनंद उलास
0: अपनी अमान कछ बहुर साले अज्ञानी मन रोस करे
1: अपनी प्रति तापी खोवे बहुर उसका विश्वास न होवे
0: जिसकी बस सागे राख है पप की आज्ञा माने माथे
1: उसते चौगन करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल
0: अनक पात माया के हे सर पर होवत जान अनेक
1: बिर की छाया सो रंग लावे ओ बिन सह ओ मन पछतावे
0: ज्योति सह सो चालन हार लपट रहो ते अंध अंधार
1: बटाऊ सो जो लावे नेह ताको हाथ नावे के हे
0: मन हर के नाम की पीत सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाए
1: मिथ्या तन धन कुटम सुबाया मिथ्या हो मैं ममता माया
0: मिथ्या राजु मन तन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल
1: मिथ्या रथ हस्ती अस वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पे खस्ता
0: मिथ्या त्रो मोह अभिमान मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान
1: अस्त्र भगत साध की शरण नानक जप जप जीवे हर के चरण
0: मिथ्या शरण पर निंदा सुने मिथ्या हस पर दरुक हिरे
1: मिथ्या नेत्र पेखत पर तिर रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुसवाद
0: मिथ्या चिन पर विकार कुतावे मिथ्या मन पर लोभ लुभावे
1: मिथ्या तन ही पर उपकारा मिथ्या बास लेत विकारा
0: बिन मुझे मिथ्या सब पै सफल दे नानक हर हर नाम लै
1: बिरथी साख्त की आर जा सच बिना कह होवत सूचा
0: बिरथा नाम बिना तन अंध मुखावता कह दुर्गंध
1: बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बिहाए मेघ बिना जो खेती जाए
0: गोविंद भजन बिन बिथे सब काम जो कर प्रते निरार धाम
1: धन धन ते जन जिह घट बस्यो हर नाओ नानक ताकै बल बल जाओ
0: रहत वर कछ अवर कमावत मानी पीत मुखो गंडलावत
1: जानन हार प्रभु परवीन बाहर भेख न काहू पीन
0: और उपदेश है अपना करै आवत जावत जन मैं मरै
1: जिसकै अंतर बसै निरंकार तिसकी सीख तरै संसार
0: जो तुम भाने तिन प्रभ जाता नानक उंजन चन प्राता
1: करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया आप मान
0: आपे आप करत नवेरा किसे दूर जिनावत किसे बुझावत नेरा
1: उपाव स्यान सगल ते रहत सब कछ जाने आत्म की रहत
0: पावे तिसले लड़ लाए थान थनंत रहा समाए
1: सो सेवक जिस कृपा करी निमख निमख जप नानक हरी
0: सुख मनी सुख अमृत पव नाम भग जना कै मन विश्राम अठ पंज श्लोक
1: काम क्रोध अर लोभ मोह बिनस जाए अहमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी
0: जय प्रसाद क्षति अमृत खाहे तिस ठाकुर को रख मन माहे
1: जय प्रसाद सुगंध तन लावे तिसको सिमरत परमगत पावे
0: जय प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे त्याज सदा मन अंदर
1: जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पहर सिमरो तिस रसना
0: जय प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई त्यावन जोग
1: जय प्रसाद पाठ पटम्बर हंडावे तिसे त्याग तवर लुभावे
0: जय प्रसाद सुसे सुई जय मन आठ पहता का जस गवी
1: जय प्रसाद तुझ सब को मान मुखता को जस रसन बखाने
0: जय प्रसाद ते रहता धर्म मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म
1: प्रभु जी जब दर गए मान पावे नानक पथ सेती घर जावे
0: जय प्रसाद और कंचन देही लिव लाओ तिस नाम स्नेही
1: जय प्रसाद तेरा उला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत
0: जय प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके मन सनी प्रभ ठाकर प्रभता कह
1: जय प्रसाद तुझ को न पहुंचे मन सास सास सिमरो प्रभु उचे
0: जय प्रसाद पाई दुर्लभ देहे नानक ताकी भगत करे
1: जय प्रसाद आभूखन पहरी जय मन तिन सिमरत क्यों आलस की जय
0: जय प्रसाद असुहस्त असुवारी मन तिस पर को कबु ना बिसारी
1: जय प्रसाद बाग मिलक तना राख पुरोहित प्रभ अपने मना
0: जिन तेरी मन बंत बनाई उठत बैठत सत सहते आई
1: सहते आजो एक अलख है इहां उहां नानक तेरी रख है
0: जय प्रसाद करे पुन बहुदान मन आठ पहर कर तिसका ध्यान
1: जय प्रसाद तू आचार बिहारी तिस प्रभ को सास सास चितारी
0: जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरो सदा अनूप
1: जय प्रसाद तेरी नीकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात
0: जय प्रसाद तेरी पत्र है गुरु प्रसाद नानक जस कह कह।
1: जय प्रसाद सुन।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: ब्रह्मा कुमारीज की मुख्य संचालिका राजयोगिनी दादी जानकी जी के कुशल नेतृत्व में आज विश्व के 120 देशों में संस्था के 8,500 सेवा केंद्र हैं। इन सभी सेवा केंद्रों का संचालन हेडक्वार्टर से होता है। अरावली पर्वत श्रृंखला की गोद में बसा मनोहारी दर्शनीय स्थान माउंट आबू। यहाँ की शीतल पहाड़ियों के बीच स्थित है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर। माउंट आबू में मुख्य परिसर है मधुबन और ज्ञान सरोवर एकेडमी फॉर अ बेटर वर्ल्ड एवं आबू रोड पर विशाल शांति वन परिसर है। इन सभी परिसरों में पूरे साल विश्व भर से लोग कॉन्फ्रेंस, ट्रेनिंग और रिट्रीट के लिए आते रहते हैं। इन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक संपन्न करने हेतु प्रत्येक परिसर में विभिन्न सभागृहों का निर्माण किया गया है। इन सभागृहों में 1500 से लेकर 5000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। शांतिवन परिसर में विशाल डायमंड हॉल में 20,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। इनमें एक ही समय में 25 भाषाओं के अनुवाद की सुविधा भी है। यहाँ आए सभी भाई बहनों को स्वयं की सत्य पहचान, परमात्मा का परिचय और समय की पहचान देने के लिए आर्ट गैलरी और म्यूजियम का निर्माण किया गया है। ज्ञान की समझ के साथ साथ योग की अनुभूति के लिए मेडिटेशन कक्ष भी बनाए गए हैं। यहाँ के शक्तिशाली आध्यात्मिक वाइब्रेशंस सभी में नई ऊर्जा का संचार करते हैं। इन परिसरों में 20,000 तक भाई बहनों के आवास एवं भोजन की व्यवस्था है। शांति वन में विश्व का सबसे बड़ा सोलर कुकिंग प्लांट है। कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन। इस पर विशेष ध्यान रखते हुए ब्रह्मा कुमार भाई बहने ही परमात्मा की स्मृति में भोजन बनाते हैं। यह परमात्मा का घर सबका अपना घर है। यहाँ आने पर छोटे बड़े सभी को अपने ईश्वरीय परिवार की अनुभूति हो।
1: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स टन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: हाँ जी, 1674 है।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स टन विच वी तुहाडी सेवा विच।

ग्रोवर्स वीन ग्रोवर्स हाँ जी हाँ जी 1674 ये नहीं है 71-72 ये है 1674 ये है 1674 सुनते रहो हाँ जी AM।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
4: मेरा नाम है रतन नूरा और काम करता हूँ खत्म पूरा भी, लव यू ऑल, भावना को समझो। दोस्तों मैं हूँ सुनील पाल और आप लोग सुन रहे हैं मुझे रेडियो हाँ जी पर, रेडियो हाँ जी 1674 AM। अब आपका AM सिर्फ रेडियो हाँ जी सुन रहे होना चाहिए। हाँ जी हाँ जी, अभी ना कहना ना जी ना जी।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर स्टंच,
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
5: सत श्री अकाल टू ऑल द रेडियो हांजी लिसनर्स।

0: एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बोल पावे ना बोल
1: प्यार नु सुनन ली कन्ना दी नी दिल दी लोड़ हुंदी
0: कुछ गल्लां कहनियां नहीं पैंदियां बस महसूस करनियां पैंदियां ने
1: एहो गलियां ते मैं हुणे अपनी जुबान वट के हो जाणा
0: इस वार गल सिर्फ बोलन दी नहीं दिल दी सुनन दी है
2: जिंदगी किवें कटांगे मैं नहीं रह सकती ओदे बिना मैनू ओ चाहिदा
0: रिलीजिंग वर्ल्ड वाइड 4th सितंबर रिटन एंड डायरेक्टेड बाय राकेश धवन लव इमोशंस अदर रिलेशनशिप्स दी कहानी बोल पावे ना बोल